महाराज कहंदे ने तपदा सड़दा वेखिया संसार, किसे नूं चैन नहीं किसे नूं शांति नहीं। इस करके जीवन पद निर्वाण इको सिमरिए, ना सिमरिए तां टिठा सब संसार, दो सुख ना नाम बिन, क्योंकि दूजी ना ही जाए किन बिद धीरिए, और कोई तरीका ही नहीं धीरज आउण दा शांति आउण दा। ते भी दसदे ने कि नाम ना जपिया जीवन एवें तुर जाएगा, तन तन होसी चार जाने कोए जाण, ते जेड़े पासे लगा है रंग रूप रस बाद के करें प्राणियां, ते जेड़ा भुलिया रह गया इस पासे उनू शांति नहीं, जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानियां। भागा वाले ने रंग रते निर्वाण सच्चा गा वही, ते कहंदे ने मैं ता आप तेरी शरण हां, नानक शरण द्वार जे तुद भावे सच्चे पातशाह, तेनू जे चंगा लग जाए ते मैं ता आप तेरे दर तो यही मंगदा हां, कर कृपा मुझ साध संग दीजे। इस तरीके नाल ही कुछ मिल सकन वाला है।

नहीं तुझे है बदो पुरख बिधाते आंखों सुहे जिठे सबे थाओ नहीं तुझे है बदो पुरख बिधाते आंखों सुहे वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हरिहा नानक कसम।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है कि इंसान चंगी तरह बोल सकदा है, इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है। फिर पढ़दे क्यों नहीं, पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

गुरु के सिखो। ओ मेरे दुष्ट दमन पिता साहिब कलगीधर पातशाह निरंकार दे चरणा नाल जुड़े हैं। आपां भी थोड़ा समा मेरे पातशाह दे चरणा नाल जुड़ के इस शब्द नूं श्रवण कीजिए। मैनू याद है कैलगरी विखे ये शब्द दास पढ़ रहा सी। आ गोरे सिख जिन्हां ते पातशाह दी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है। आ नवे सिख सज रहे भावें उन्हूं समझ नहीं सी आ रही, सुन रहा सी। बीबी सी उसने उठ के कहा भावें मैनूं अर्थ समझ विच नहीं आए पर मेरा मन कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के चरणों नाल जुड़ गया। उन्हें आख्या मैं नितनेम नाल इसनूं टेप ते सुनदी हाँ और बड़ा ही मैं जिवें शब्द सुन के हेमकुंड साहब ते पहुँच जानी हाँ। तो गुरु की साध संगत आओ आपां भी उसे ध्यान

अजय सुरों में पीख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन बिछड़ गया रोवे ते सिर लंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पए मंजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जाख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंत काल मत लागे पीर रोवे राजे कन पड़ाए कर कर मांगे पीख्या जाए रोवे कृपन संचे तन जाए पंडित रोवे ज्ञान।

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत में बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला।

सुनंद शंका मनो मिटाए के गुरसिखा दी सेव करंदा किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आन वरतंदा गुरसिखा नू दे कर पिछों बचिया आप खवंदा।

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुलमी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुलमी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी उनू छड़ देवांगे। केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहिंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहिंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उहदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देंगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज की कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओह ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जिहियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साला

गुरु अर्जुन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं चरण छलो मार्ग गोविंद। एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकता है। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउने। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहे गुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर रहे जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सखे हम बारक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है, इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है। फिर पढ़दे क्यों नहीं, पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

पता नहीं किन्ना कु सियाणा है, किन्ना कु सुगड़ है, कोई हिसाब ला सकता है? क्योंकि उसकी किरत का ही हिसाब नहीं लाया जाता। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार। तेरी दिती हुई दात की समझ नहीं आती, तेरी समझ कितों आ? तेरी दात का ही मुल नहीं पाया जाता, तेरा कौन मुल पावे? तेरी दात ही एडी सोहनी, एडी खूबसूरत, एडी जुगत वाली है, तू कि सियाना होगा? साहब कहते मत समझी, वो सियाना कोई होर भी है जिसने तेन शरीर दिता है, जिसने शरीर च मन पाया, जिसने तेन वर्तन वास्ते धन दिता है, जिस दया सारिया बख्शिशा भोगदा है, वो सियाना होर तेन कोई मिलेगा नहीं। ते कई बार तो इन्ना भी भुलेखा लग जाता है, तू ऐसा समझने लग पैना उन्हें कोई गलती की है, मैं ठीक कर दिया। जो उन्हें बनाया शायद गलत बनाया, मैं उन्हें ठीक कर देवा। जो उन्हें रचिया शायद गलत रचिया, मैं सुधार कर देवा। अपने आप को सियाना समझ बैठा होवांगा। कोई सूरत नहीं, कोई तरीका नहीं कि तू अपने आप को सियाना समझ सके। जिसने तन मन धन जिन प्रभ दिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान। एक शब्द च महाराज सच्चे पातशाह ने सानू चेता कराया, चेता ही कराने वाली गल है। पता सारा है, भुल जाने साहबा ने पावन बाणी च सानू उन्हां चीजां दी सारी लिस्ट तां नहीं आउंदी, लेकिन मोटिया मोटिया जिन्हां बिना बंदे दा नहीं सरदा, उन्हां दा जिक्र महाराज ने कीता। तो कहने तेनू ओदा चेता है, तेनू ओदा ख्याल है, जिसने तेनू इन्ना कुछ दिता है।

पर फिर सोचे मना ए जड़े फुल तू सुचे समझ के लिया है ए ता झूठे किवें जदों फुल खिड़दा है ता पवरा उन्हों सुंग जांदा है।

शेर की आवाज आई। भगत जी उस पासे तुर पे। सामने शेर आया, शेर दियां अखां दे विच अपनियां अखां मिलाईयां, तां ए गल कही।

इस तरह रम्य होया है जिस तरह दर्पण शीशे दे विच साडा चेहरा मौजूद है। जदों शीशा देखांगे सानू साडा मूंह नजर आवेगा। इसे तरह ही वो परमेश्वर है, जदों देखांगे

देव देव सामने आ गए ते नामदेव नूं ही पुछदे ने ओ भगता नामदेव दा घर किहड़े पासे। नामदेव जी कहन लगे तुसी नामदेव दे कोलों की लैणा। ब्राह्मण भगवान

नाम देव दा घर बड़ा दूर, जिन्ना तुहानू कपड़ा चाहिदा है मेरे कोलों सूत्र ले लो। भगत जी ने अद्धा सूत्र

हलत पलत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय।

संत बाबा अतरसिंह महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा।